0: restrictions in Punjab on the issue of making the state free from the menace of drugs. Mr. Shah said the government has addressed terrorism in Jammu and Kashmir and ended extremism in the northeast, adding that the focus will now be on making Punjab drug-free.
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा
2: पंजाब कैन नॉट ट्रूली डेवलप अंटिल इट्स यूथ आर फ्री फ्रॉम ड्रग्स ड्रग अब्यूज इज डिस्ट्रॉइंग आवर फ्यूचर जनरेशंस ओनली द भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी कैन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू एंश्योर दैट ड्रग्स डू नॉट रीच द यूथ ऑफ पंजाब नो वन एल्स कैन डू इट
1: भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कोई और नहीं कर सकता
0: The BJP has claimed that the India bloc is facing internal differences after several leaders skipped the alliance's meeting held in New Delhi today. Addressing a press conference in New Delhi, senior party leader and Union Minister Shivraj Singh Chauhan said leaders of several parties, including the DMK, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party, did not attend the meeting. He also claimed that leaders of the India bloc and the Congress were not willing to accept Rahul Gandhi as their leader.
3: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर
4: इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर इट्स रिपीटेड मिस्टेक्स कांग्रेस कंटिन्यूज टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन मेक फॉल्स क्लेम्स एंड लेवल फैब्रिकेटेड एलिगेशंस टुडे देयर वाज अ मीटिंग ऑफ द इंडिया अलायंस बट द अलायंस फेल अपार्ट इवन बिफोर द मीटिंग कुड टेक प्लेस एंड द ट्रुथ इज दैट द इंडिया अलायंस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट राहुल गांधी एज इट्स लीडर
3: सच बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है
0: The partners of India bloc today met in New Delhi to chalk out their strategies on the Special Intensive Revision SIR exercise and issues related to the Election Commission. This is Akashvani. You are listening to the news at 9.
5: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
0: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Self-Reliant India.
6: Self-Reliant India is an initiative aimed at promoting domestic manufacturing, reducing import dependence and making India Atmanirbhar. The initiative was launched in 2020 by Prime Minister Narendra Modi to make the country self-reliant in every sector. Initiatives such as production-linked incentives, Agriculture Infrastructure Fund, Make in India and support for micro, small and medium enterprises are intended to increase India's productive capacity. Addressing the nation on the 79th Independence Day, Prime Minister Modi declared self-reliance as the foundation of a developed India.
7: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है और मेरे प्यारे देशवासियों विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है
6: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज रिटायर्ड कॉमोडोर श्रीकांत किसनूर सेड दैट इंडिया हैज मेड जॉइंट स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इवॉल्विंग फ्रॉम अ मेजर इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू एन इमर्जिंग एक्सपोर्टर
8: In the field of self-reliance in defense, we have made giant strides from importing equipment. We have now skyrocketing exports. Last year was almost 40,000 crore rupees. And I think specific platforms where we have done amazingly well, BrahMos missiles, surface-to-air SAM missiles, and above all, warship, including the aircraft carrier Vikrant. I think we are going great guns in Atmanirbharta in defense with huge reliance on indigenization, and that has really got a boost over the last decade or so.
6: Self-Reliant India is a long-term vision of building a strong, more capable and resilient economy to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. With Dipendra